सतगुर होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुर होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधु मेरे नाल मेरा साथ दे रहे हैं।

मां बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, मां बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, बाल पुने दे चावां वर्गी ते सजन दियां खुलियां बावां वर्गी, खुलियां डुलियां थावां वर्गी मेरे पिंड नू जांदे रावां वर्गी। आओ इस दी शान वधाइए एदे सोले रल मिल गाइए, क्योंकि बोली ना रही तां कवितावां रुल जाणियां, मावां दियां लोरियां दवावां रुल जाणियां, एडे महंगे मुल वाली चीज ना।

0: 500 जी वेलकम
1: जी।
0: हां जी
1: मतलब ये ना लगता जी बल मतलब जो अपना कहते हैं भी जोर ओदे बारे ना क्या हो
0: जोर नु कहा गड्डा खिचना उसे हद हो गई यार प्रोफेसर पंजाबी लड़ा आ पंजाबी साड़ी हजे कहिंदा जी पंजाबी पढ़िया करो पंजाबी सुनाया करो वल दा मतलब नहीं दस सकिया बंदा यार की करिया जावे रब्बा 2825 कहिंदे वल जोर जोर दसना वाह भले तेरे भरावा आ तां भाई खिचता काटा वल दसना कहिंदे
1: हां जी भाई साहब
0: वल कढना नहीं कहता कते हां जी बोलो बोलो बोलो बोलो जल्दी करो हाँ तुसी दसो ना की है
1: हां जी ठीक है भाजी बहुत बढ़िया गाना लाया बहुत बढ़िया फ्राइडे भी है गुड हो गया
0: हाँ
1: वल का मतलब मैं जरा समझदा है भी तरीका जोग तो कोई ढंग कह सकते हैं ना
0: अच्छा चलो ठीक है देख लेने बाई जी जेडे कहते जोर जोर दसना झटका लाना कोई ओना बारे भी दसो चलो एक और कॉल लेने 8198 जी वेलकम 8398 हेलो हेलो हेलो सत श्रीकाल कौन बोल दो
2: मैं सतनाम बोल रहा गुस्से तो
0: अच्छा गुस्से वाले की हाल है
2: ਕਹਿਣਾ
0: ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ
2: ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ

0: Stars and Fire Radio, good for your body, mind, and soul.
1: आइए आइए आपका स्वागत है हर संसार में और जुड़िए आत्मा परमात्मा घरेलू दुनिया और बाहर की दुनिया के साथ।
2: आपको अपने आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेस, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में, मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में, ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-5333 पर कॉल कीजिए। 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
3: राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याज में दाई, कहना

सत अपने कोमल जाए, जिन पैज रखी सारे संसार रहा, कर मस्तक धार बालक रख लीनो,

सप्ताश्वो नाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सत्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मातालो गुल्फौ पातु तिशां पतिः पादौ पातु दिलमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यं अभेद्य वच्छ सन्निभम्।

0: मधुराधिपते अखिलं मधुरम्।
1: गणेशाय नमः। अथ श्रीकुलदेवी गुलाभीश्वरी गुणसंरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्रीकुल पूजया कुलाम्बा कुलरक्षिणी वेद माता जगन्माता लोकमाता हितैषिणी आदिशक्ति समुद्भूता विश्वबन्ध्यां महाघोरां गाहिशागतं त्रैलोक्यं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोऽस्तु ते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धिकरी माता त्राहि मां शरणागतं चिदग्रीमण्डल सम्भूता राज्यवैभवकारिणी प्रकटीतां सुरेशानी वन्दे त्वां राजगौरवं त्वदीये कुले जातः त्वामेव शरणं गतः त्वद्वत्सलोऽहं पाढ्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनं कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृती पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी श्रीकुलदेवी।

मगन हवे पाठ करै धरि ध्यान बाधा सब हर संघा सुरा सब प्रिय प्रतिमा।

श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, या अली मदद। और आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, लेबर डे वीकेंड है। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को तैयार कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। पहली बार छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी पहली बार स्कूल जाएंगे, और फिर जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जो बच्चे हैं पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने लिए भी जिंदगी को बेहतर बनाएं और खूबसूरत बनाएं, और अपने ड्रीम्स को पूरा करें, जो भी उनके लाइफ के ड्रीम हो तो उनको खुशियाँ मिलें। इसी प्रार्थना के साथ हम प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हैमिल्टन मंदिर में सरस्वती पूजा होने वाली है, तो आप अपने बच्चों को लेकर के जाइएगा। वहाँ पे कथा भी पूरा एक हफ्ता चलने वाली है, तो आप जरूर जाइएगा। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हैं, अपना टीवी एकदम बढ़िया लेके आना चाहते हो, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास आपके लिए बहुत बढ़िया सामान है, और फिर आपके लिए बहुत बढ़िया उनके पास आउटडोर आपको फर्नीचर चाहिए, या फिर आपने बहुत बढ़िया सा अपने लिए बारबेक्यू लेके देना है, तो ये सारा सामान आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। तो ये सारा कुछ आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। एक लोकेशन उनकी इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वालफ में है। तो आप और जानकारी के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप 799-00-45 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। हैमिल्टन वासियों, की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ $5,000 तो लैके $1,00,000 तक, ते फाइनेंस दी चिंता ना करो। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवें टायर दी लोड़ है तां ओह वी मिलणगे, चार टायर दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू। हुण सुणो AM 530 लिसनर लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन आओ, सानू सिर्फ ए दसो मैं AM 530 ते मीरा शर्मा तों तुहाडे बारे सुनिया है, अगे तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सीधी बचत, तां फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन। कॉल करो 365-384-3840, 365-384-3840, 365-384-3840। जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो ये जो बीबीटी डीलर वाले हैं, कार डीलरशिप हैमिल्टन में, बहुत ही बढ़िया इनकी सर्विस है, तो आप जरूर जाइए, आपको बहुत बढ़िया डील देंगे। तो हमारे प्रोग्राम को इन्होंने ज्वाइन किया है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स को कॉल कीजिए, HK मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, और आपका सामान हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही ट्रक बुक कर लो 416-524-704, 416-524-6704। आपके लिए बहुत ही खुशी खबर है कि लंदन वालों के लिए आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो वहां पे खुल चुके हैं गोर रोड पे, और जानकारी के लिए मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पे जाओ, और आपके लिए बढ़िया सर्विस देंगे। नई आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। मास्टर कोलिजन डिपो वालों का बहुत सालों का तजर्बा है, बड़ा नाम है उनका।
अब आपके लिए अगर आपने बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ लेनी है, खाना ऑर्डर करना है, तो न्यू इंडिया स्वीट्स रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है। और जानकारी के लिए 905-814-1703 पर कॉल करो, 905-814-1730 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो खीर जो है वो बहुत सारे लोगों ने गाई है, जैसे चरखा बहुत सारे लोगों ने गाया है, खीर भी इसी तरह के बहुत सारे लोगों ने गाई है। तो मैं आपको आशा सिंह मस्ताना ने जो लता जी ने गाई है, तो आशा सिंह मस्ताना ने जो खीर गाई है वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल पंजाबी, जैसे रोमांटिक जो रोमांटिक किस्म का जो गाना है, तो किसी का रोमांस सफल नहीं हुआ था, उस जमाने की बात है, इट्स मिथ काइंड ऑफ स्टोरी। सो लेट्स गो टू दिस।

तो जैसे वारिस शाह की आपने सुनी, आपको ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और आप की बढ़िया बढ़िया गीत सुनाऊंगी। तो अब अगर आप अपने घर में बढ़िया फर्नीचर लेके आना चाहते हो, बढ़िया टीवी लेके आना है, लेटेस्ट किचन गैजेट चाहिए, आपने अपने घर में बारबेक्यू लेके आना है, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वास में है। और जानकारी के लिए उनकी मंथली वीकली स्पेशल देखने के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045-799-0045। आपने छोटी सी किचनेट सेटअप करवानी है तो वो भी आपको वहीं पे वो सेटअप करके देते हैं। तो ये है आपके लिए जी हाँ, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन बहुत में, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, उनकी स्पेशल देखो, फिर अपना ऑर्डर बुक करो 905-799-0045। अब अगर आपने मूविंग करना है तो

जाइए। अब अगर आपने कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन जी को आपको बड़ी खुशी की खबर है कि लंदन में खुल चुके हैं वो रोड पे, तो आप और जानकारी के लिए masterkolijanjiku.com पर जाइए, फिर उनको आप कॉल कर सकते हो। आप सुन रहे हो प्रोग्राम खाटू सार और मैं हूँ आपकी दोस्त मीरा।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड तो आते इन्ने साला दे परोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन से 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट और 3 लोकेशन तो सर्व करते ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड इटोबिको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150-01621-1165।
1: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो लॉन्ग वीकेंड है, आप प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव एंड हैव अ वेरी सेफ लॉन्ग वीकेंड।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। ये जो फोक म्यूजिक है एक कल्चरल चीज है उसमें, तो उसमें हमेशा हमें एक गाए जाते हैं वो ऐसा ही एक अपना एटमोसफियर क्रिएट करने के लिए ये गाने गाए जाते हैं। तो हमारे लिए विदेशों में अपने मुल्क का अपना म्यूजिक सुनते हुए और फिर उस एटमॉस्फेयर में फिर चले जाना, थोड़ी देर के लिए झलक उसकी मिल जाती है हमें। तो हम इन लोगों का जिन्होंने इस तरह के गाने गाए हैं और गाने गा करके हमारे लिए छोड़ गए हैं, तो उनका जब तक ये धरती आसमान

0: करनी है, तब तक हम उनको सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। क्या ख्याल है, सही है ना? तो अभी मैंने आपके लिए और भी बहुत ही सुंदर सा गाना चुना है, जमला जट, लाल चंद जमला जट का। तो ये भी बहुत सारे गीत गाए हैं जमला जट जी ने। सो आपको किस तरह का गीत आपको सुनाया जाए, तो पहले आपको बता दें कि अगर आपने अपने घर में फ्रिज सो वाशर ड्रायर लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक से जाइए। मूविंग होनी है तो आप जा सकते हो, जी हाँ। तो अगर मूव करना है तो इसके मोबाइल 416-524-7404। अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है, बेस्ट ट्रक रिपेयर टायर सेंटर 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हैं। तो अब आपको गाना सुनाना चाहूँ, अभी उनका गाना ही आपके लिए सुनाऊंगी। तो लेट्स गो टू दिस वेरी ब्यूटीफुल पंजाबी सॉन्ग। आज का प्रोग्राम हमने पंजाबी में ही आपको सुनाना है। तो कृष्ण जन्माष्टमी है, तो अभी पूरा वीकेंड ही लोग जाएंगे, कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ है तो उनको झूला जलाएंगे, बहुत ही प्यारा वातावरण मंदिरों में बना हुआ है। तो कई मंदिर शायद आज मनाएंगे आधी रात को कृष्ण जन्माष्टमी। तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आइए सुनिए ये पंजाबी।
1: जंगल दे विच बुआ लवा

0: लगतिया नाम कई नहीं वो, नाम कई नहीं वो लगतिया नाम कई नहीं।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, तो आपको रमता जी का भी जरूर सुनाएंगे। रमता जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, ये रमता मीमा बिच वही आपको सुनाऊंगी, पर पहले उससे शमशाद बेगम जी का बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने आपके लिए चुना है वो सुनाऊंगी। पर पहले आपको बता दें कि अगर आपने कोलिजन का काम करवाना है, लंदन में रहते हो, आसपास के आपके लिए वो मास्टर कोलिजन रुकू वाले हैं, तो आपकी कार ले जैसा बना देंगे, तो आप masterkalyandeepu.com पर जाइए और उनकी सेवाएं लीजिए। अब आपके लिए ये जो कृष्ण भैया का जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया है इस वीकेंड में, लॉन्ग वीकेंड में, तो आपको सभी को जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और जो नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो भी कृष्ण भैया का ही रूप होते हैं, तो उनको हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं स्कूल शुरू करने के लिए, और यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं हम उनको भेजते हैं। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

मैं कोशिश करती हूँ मतलब इस गीत आपको सुनाने की, क्योंकि ये जो गाने हैं एवरग्रीन सॉन्ग हैं और आपका जो दिल बहलाने वाली बात होती है ये गाने हमेशा आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपका मनोरंजन करती है। तो कृष्ण जन्माष्टमी जो है, कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इट इज मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द एट्थ अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड कृष्णा वॉज बोर्न एट मिडनाइट इन द प्रिजन इन मथुरा टू देवजी, और वहाँ पे जो कहानियां बनाई गई हैं वो मैं सोचती हूँ कि वो लोग बड़े किस्मत वाले हैं इंडिया में जिनको मथुरा जा करके, वृंदावन जा करके, उनकी जन्मभूमि पर जा करके ये जो त्योहार है वो मनाने का मौका मिलता है, एंजॉय करने का। यहाँ कनाडा में कम नहीं, उन्हें भी कम नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से सभी मंदिरों में, बड़े मंदिरों को सजाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल इट सिंबलाइजेस कृष्णा वाज बोर्न टू एंड द टायरनी ऑफ हिज क्रूअल अंकल मामा किंग कंस। तो ये है कि एज द एट्थ अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु ही डिसेंडेड टू अर्थ टू रिस्टोर राइटियसनेस ट्रूथ एंड कॉस्मिक बैलेंस। ये दुनिया को एकदम संभाला उन्होंने आकर के, तो लोगों में शांति सुख की लहर छा गई। तो ये जो भगवान है किसी भी रूप में, चाहे जीसस के रूप में, किसी भी रूप में जन्म लेते हैं, अपने ये जो जब इंसानियत के ऊपर बहुत अत्याचार होने लगते हैं तो उनको, लोगों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस धरती पर आते हैं ये देखा। तो आइए अब आपको एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। जैसे मैंने कहा कि रामता का जो गीत है ना, तो उसका जो पंजाबी का है रामता, तो वो गाना मैं थोड़ा तो सुनानी है। आई एम योर होस्ट मीरा शर्मा और आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आएंगे और साथ में आपको ये भी, साथ ही हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे हाजिर हो जाएंगे। तो हम आपको बहुत प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया पंजाबी के गीत सुनाएंगे, हिंदी के गीत सुनाएंगे। का समय हुआ चाहता है, मैं यहीं पे आपसे हूँ, रात को आपकी सेवा।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

मेरे काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंतना कोई करने हारा करदा आपे जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडी अपनी संतोष कौर ते तुहाडा सारिआं दा स्वागत है तुहाडे ही अपने शो रेडियो आवाज़ जी ते तुहाडा ते साडा साथ इंज ही बना रहेगा 1 बजे तक ते तुसी सुनदे रहो साडा शो रेडियो आवाज़।

0: जी वाह, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है गाया जिसमें जी द एनआरआई एंथम असी बहुत एंथमा सुनिया सी, एनआरआई दी नहीं सुनी सी। सो अज ता बहुत वधिया सॉन्ग हैगा और एक्चुअल जिन्हां ने रियल लाइफ स्ट्रगल दिखाई आ, सो स्ट्रगल तो डरना नहीं है हर बंदे ने। मैनू लगता है पंकज जी 80% लोगों ने जो इस कंट्री च असी आए हाँ तो असी अपनी लाइफ बेसमेंट्स तो शुरू की आ। सो बेसमेंट साडा पहला घर हुंदा इत्थे, मोस्टली मैं नहीं कहंदी 100% बट 80% लोकां दी लाइफ बेसमेंट तो शुरू हुंदी आ और 80% लोकां दी जॉब भी पैकिंग जॉब या इदां दीआं वेयरहाउस जॉब्स हुंदीआं। सो इस कंट्री ने सानू बहुत कुछ दित्ता ते बहुत कुछ सिखाया कि कोई काम छोटा या कोई काम वड्डा नहीं हुंदा। सो ओह काम कर करके असीं अज इत्थे तक पहुंचे हां। सो सारिआं ने मेहनत करदे रहना, मेहनत नहीं छड्डनी। हांजी पंकज जी, तुसीं इशारे कर रहे हो, कुछ बोलना चाहुंदे हो?
1: हांजी हांजी, वो मैं आपके ना टीचर की क्लास में उतना एक बच्चा
0: ये स्टूडेंट मुझे बहुत तंग करता है। सो पंकज जी दी आवाज आ रही है, पंकज जी दे कुछ प्यारे प्यारे लिसनर्स हैगे, ऑलवेज पंकज जी नु मिस करदे आ। सो तुसीं सारे दसो पंकज जी दी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है?
1: मेरे जो हिंदी लिसनर्स हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा, सर के स्टाइल में पूछना, मैं पूछता हूँ भाइयों बहनों मेरी आवाज आपकी तरफ पहुंच रही है कि नहीं है, तो करना क्या है जी, आप 905673

बिजनेस नु प्रमोट कर ले देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी थोड़े अंग संग है 24 घंटे सतो दिन हुण तक देश पर देश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके है ते करवा रहा है इम्पॉसिबल इज नथिंग तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश पर देश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551

0: आफ्टरनून, वेलकम टू डेव टाडला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं तुहाडा इदा दिन अच्छा गुजरिया होगा। अगले एक घंटे में तुहाडे लई बहुत सारे पैसे बचा के देने हैं, चाहे ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस हो या ग्रैंड फर्नीचर हो, जिथों असीं लाइव ऑन लोकेशन कवर करांगे। स्टूडियो च सुल्तान जी भी आ चुके ने। सुल्तान जी, स्वागत है प्रोग्राम च।
1: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ते देव पा जी, आज एक चीज दसनी बहुत जरूरी है, क्योंकि 8 सितंबर तो टैरिफ जेड़ा होम अपलायंसेस दे उपर, स्टील दे उपर 25% लग गया।
0: थैंक यू डोनल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है तुहाडा। हुण 25% लग गया जेड़ा तुहाडे कोल समान आ
1: जी, टोटल प्राइस 30% का डिफरेंस आ रहा।
0: फ्रेट जो समान उधर इधर
1: गैस की वजह तो ना जी।
0: अच्छा, 5% हो गया
1: जी।
0: सो 30% सीधी सीधी बचत है।
1: हम 30% की एग्जाम्पल देन लगा मैं, $1,000 का जो फ्रिज सी और वह हो जाना $1,300 का,
0: ठीक है।
1: $2,000 वाली जी वाशर एंड ड्रायर है वह हो जानी $2,600 की। जेड़ा फ्रिज स्टोव डिशवाशर एज ऑफ टूडे आप दे रहे हैं $5,000 वाला $29.99 च, जिस च 2,000 इस टाइम कस्टमर सेव कर रहे हैं, ये हो जाना $38.99 का।
0: भाई साहब 30% की बचत हो रही है, लेकिन हो रही है मंडे तक ही।
1: बिलकुल जी, 8 सितंबर तो पहले पहले
0: जेगा 30% एक्स्ट्रा देना पेगा।
1: उन्होंने नवी प्राइस लिस्ट के हिसाब से साढ़े को चोइस ही कोई नहीं जी।
0: सो हुण चॉइस हैगी तुहाडे कोले, अज चॉइस है, कल नू चॉइस है, लोंग वीकेंड आ चुका है, लोंग वीकेंड दी चॉइस है। तुसी ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंस ते जाओ, फ्रिज लो, स्टोव लो, बंडल पैकेज लैओ, लॉन्ड्री लो, अपने डिशवाशर लो, माइक्रोवेव लो, जेड़ा भी आइटम उत्थों चखोगे, जेड़ी भी आइटम चखोगे, 30% दी बचत हो रही है।
1: ते फॉर एग्जाम्पल तुसी लैंदे जी बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वाल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर, बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, तुसी किचन रेनोवेट कर रहे हो, बिल्ट इन किचन देख रहे हो, एज ऑफ टूडे तुहानू मिल रहा $12,000 वाला $6,900 च, ते जे 8 सितंबर तो बाद लाओगे तो यह पैना तुहानू $8,900 च, ना कि तुसी 40% सेव करना, बल्कि 30% एक्स्ट्रा पे करना नवी प्राइस लिस्ट के हिसाब न। सो जेड़ा भी 25% का होम अपलायंसिस के उपर स्टील के उपर एक टैरिफ लग्या, इंप्लीमेंट हो रहा 8 सितंबर तो, पर एदा एक साढ़े को ट्रिक हैगा कि तुसी 10% डिपोजिट दवो, $300-$400 डिपोजिट करके डी लॉक कर लो,
0: महीने तीन महीने
1: एग्जैक्टली, डिलीवरी डेट सितंबर अक्तूबर नवंबर की जी मर्जी रखो,
0: टैरिफ सेल लग चुकी है। टैरिफ दी सेल आ दिने,
1: बिल्कुल टैरिफ सेल ही है जी, टैरिफ तो बचाओ दी सेल।
0: हां, टैरिफ तो बचो दी सेल है,
1: टैरिफ तो बचो दी सेल है,
0: ते तुसी इस सेल दा फायदा चक सकदे हो। अच्छा, पहला चलदे आ पर टेलीविजन वाली लिस्ट वाल।
1: टेलीविजन जेड़े है जी, ओदे विच भी देखो तुसी $300-$400 प्राइस इंक्रीज होनी है। 85 इंच की आप गल करिए, 85 इंच सोनी लवांगे तो सोनी ब्रेविया 3 मिलेगा।
0: अच्छा,
1: सैमसंग लैणगे कस्टमर तो सैमसंग मिनी LED मिलेगा, 2026 का लेटेस्ट मॉडल है, $2,200 तो अज एज ऑफ टूडे $1,599 का, 700 सेव हो गया।
0: हाँ जी,
1: 8 सितंबर तो बाद
0: $1,899
1: का।
0: लो, 8 सितंबर किने देखा, अज जाओ,
1: 8 सितंबर मीन्स बस आही वीकेंड है जी,
0: लॉन्ग वीकेंड है, उदो बाद 30% वध जाना सारा कुछ।
1: और ये लॉन्ग वीकेंड जेड़ा ये बैक टू स्कूल वीकेंड है, साडे ऐसी फैमिलीज, ऐसे बच्चे जेड़े जा रहे हैं यूनिवर्सिटी च,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अगर वो जॉइंट अकोमोडेशन देख रहे हैं तो उथे लिविंग रूम च टीवी चाहिए, 50 इंच सिर्फ $299,
0: 50 इंच टेलीविजन $299 का, 50 इंच टेलीविजन चक लो, ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस 905-450-2858,
1: 55 इंच $399,
0: 399 55 inch television ਮਿਲੇਗਾ 55 ਇੰਚ ਜਸਟ ਫਾਰ 399 ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਸ
1: ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖਣਾ ਤੇ 40 ਇੰਚ 199
0: 40 ਇੰਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 199 40 ਇੰਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਆਪਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ
1: ਸੋ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 95 ਇੰਚ ਬਿਗ ਸਕਰੀਨ ਟੀਵੀ ਲੈਣਾ 85 ਇੰਚ ਲੈਣਾ 98 ਇੰਚ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਗ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਸਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 98 ਇੰਚ $3500 ਵਾਲਾ 1999 ਦਾ ਅਤੇ 1999 ਵੀ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਫਰੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਵੇਡ ਐਂਡ ਚੰਕੂਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਡੋਟ ਕੋਮ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀ ਵੀ ਐਪ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀ ਵੀ ਏ ਪੀ ਪੀ ਵਨ ਵਰਡ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀ ਵੀ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਜਾ ਦਾ ਜੂਸਰ ਵਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਐਂਟਰ ਕਰਾਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀ ਵੀ ਐਪ ਟਿਕਟੋਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ 905-450-2828 ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 905-450-2828

0: on September 13th at 10 a.m. Join the Brampton Parkinson Canada Superwalk and help make life better for Canadians living with Parkinson's. The walk will start and finish at Susan Fennell Sportsplex in Brampton. With the same strength of spirit people living with Parkinson's demonstrate daily, we will not stop walking until there is a cure. Register or donate at superwalk.ca and make a real difference in the lives of those affected by Parkinson's. Proudly sponsored by CHLO AM 530.
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
2: वेलकम टू रेडियो गोल्ड. आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम, जहां सिर्फ आपके लिए है सब कुछ, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक नया और रोमांचिक अनुभव, जहां होगा म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, न्यूज, टॉक शो और आपका और हमारा साथ. तो सुनते रहे रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम, क्योंकि ये है आपके साथ हमेशा. सुनहरे लम्हे और चमकती दुनिया में आपका स्वागत है, जहां हर लम्हा है सोने की तरह कीमती. गोल्डन मोमेंट्स की मिठास रेडियो गोल्ड के साथ.
3: स्वागत है आप सबका रेडियो गोल्ड में, और प्रोग्राम लेके हम हाजिर हुए हैं आज से नया प्रोग्राम आपके लिए. 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा आपका और हमारा साथ साथ साथ. और स्टूडियोज के नंबर हैं 6479569636. सोनम की तरफ से 5 से 6 रेडियो गोल्ड आप सुना करेंगे हर रोज. कोई भी आपने बातचीत करनी है इस प्रोग्राम में, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. हम इसमें बातचीत करेंगे पॉजिटिव थॉट की, जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है उसके बारे में बात होगी, रियल एस्टेट की बात होगी, मॉर्गेज की बात होगी, खाने पीने की बात होगी, और उसके बाद फिर एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो सके. और साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज में रितेश जी हैं. रितेश जी स्वागत है आपका.
4: सत श्री अकाल और आदाब
3: जी. और नासिर जी भी आज स्टूडियोज में पहुंचे हुए हैं. नासिर जी स्वागत है आपका.
5: जी बहुत शुक्रिया सोनम जी. रेडियो प्रोग्राम सुनो नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. और सोनम जी पहले तो आपको भी वेलकम करते हैं,
3: रेडियो
5: गोल्ड को वेलकम करते हैं, क्योंकि आप बहुत पुरानी होस्ट हैं और इस चैनल पे आई थिंक पहली दफा होस्ट करने जा रही हैं. और
3: मैंने नासिर जी किया था 2021 में.
5: अच्छा,
3: लेकिन थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर
5: लेकिन इस चैनल का ये फायदा, बहुत सारे लिसनर हैं जो कि बहुत सारे शौक से प्रोग्राम सुनते हैं, तो हमें ज्यादा खुशी है कि हम उन लोगों में आ गए हैं जो वाकई शौक से रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं. और सबसे बड़ी बात है सोनम जी, जिस तरह का नॉलेज, जिस तरह का एक्सपीरियंस आपको है एज ए होस्ट, आपने काम किया है 15-16 साल से काम कर रही है डिफरेंट चैनल्स पे, तो उसका फायदा ये होता है भी आपको बहुत कुछ सीखा हुआ है. हमें अब इंजॉय करना है आपके प्रोग्राम को सुन के. जब भी आप प्रोग्राम करेंगी तो हमें पक्का यकीन है भी आपके प्रोग्राम सुन के हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम बड़े शौक से सुनेंगे. और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने कोई गाने की फरमाइश करनी है, आप गाने की फरमाइश भी कर सकते हैं, क्योंकि सोनम जी के पास बहुत सारी वैरायटी है. ये पंजाबी भी बोलती है और हिंदी भी बोलती है.
3: सबसे खूबी जो पंजाबी
5: जो खूबी की बात है इनकी, ज्यादा वो ज्यादा इंजॉय करते हैं हम लोग इनके प्रोग्राम को सुन के, क्योंकि ये दोनों जुबाने में बातें करते हैं, उर्दू भी, हिंदी भी और पंजाबी भी.
3: उर्दू भी आती है
5: जी, उर्दू भी आती है मुझे, पता है ये, पक्का यकीन है मुझे. और ये प्रोग्राम अगर आप सुनेंगे तो आपको श्योर हो जाएगा वाकई कोई प्रोग्राम आ गया आपके इस चैनल पे जो कि आप सुन के इंजॉय करेंगे. और मैं एक बार फिर आपको वेलकम करता हूँ सोनम जी 5:30 AM पे, जो कि आपका रेडियो प्रोग्राम गोल्ड है जी. क्या कहना चाहेंगे आज, और पहले पंजाबी से शुरू करिए फिर.
3: हाँ जी, पंजाबी से गल.
4: हाँ जी बिल्कुल, करने हैं पंजाबी.
5: जी सोनम जी पहले पंजाबी बोलो.
3: बिल्कुल जी.
5: मैं अपने ना पोतरे दोतरे को कहता हूँ भाई पंजाबी बोलिया करो. हाँ. बड़ी मुश्किल से बोलते हैं. अच्छा जी की करना है.
3: अच्छा जी.
5: वो तुसी तो सही बोल दे हो.
4: हाँ, पर कई बार बड़ी स्वीट लगती है.
5: हाँ जी बिल्कुल. सोनम जी तुसी पंजाबी किवें बोलोगे?
3: बिल्कुल जी. नासिर जी, रितेश जी, थोड़ा स्वागत है प्रोग्राम दे विच. और बिल्कुल किसे साडे लिसनर्स दा भी स्वागत है. कोई भी प्रोग्राम करना, कोई भी प्रोग्राम तुसी गीत संगीत सुनना चाहते हो, या फिर तुसी कोई गलबात करना चाहते हो, तो स्टूडियो से नंबर या फिर मेरा नंबर 4169106000 है.
4: स्टूडियो नंबर ने 4162337368
3: प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं। हम फेसबुक लाइव भी हैं, आप फेसबुक पे जाके भी हमें देख भी सकते हैं। कहते हैं कि जस्ट लव योर सेल्फ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ, टेक द टाइम टूडे टू अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड टू लव योर सेल्फ। आई थिंक यू डिजर्व इट। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतनी भागदौड़ में आगे निकल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि खुद को हम काफी पीछे छोड़ आते हैं। तो खुद के साथ समय बिताएं टू कंप्लीट योर सेल्फ, टू ग्रो योर सेल्फ। हम सब गलतियां करते हैं एंड डोंट पैनिक ना हो, गलतियां हम सब करते हैं। मिस्टेक करने का मतलब है टू ग्रो, खुद के साथ ग्रो करें, खुद के साथ रहें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने आप को अप्रिशिएट करें, क्योंकि यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। सो लव योरसेल्फ और प्रोग्राम यूं ही सुनते रहें। 5 से लेकर 6 बजे तक रहेगा आपका और हमारा साथ साथ साथ,
5: साथ। जी
3: एक खूबसूरत से गीत की तरफ आपको लेके चलते हैं, फिर उसके बाद खबरों का सिलसिला, रियल एस्टेट न्यूज होंगी, डिस्कशन होगी और मॉर्गेज की बातें होंगी। दो बहुत बड़े प्रोफेशनल्स हमारे साथ हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा सा इतना खूबसूरत गीत है, अगर हमारे लिसनर्स भी उसको सुन रहे होंगे। ये आजकल वायरल हो रहा है,
5: अच्छा
3: टिकटॉक पे बहुत वायरल हो रहा है।
5: क्या बात है।
3: मुझे ये नहीं पता कि सिंगर कौन है, अगर हमारे लिसनर्स को किसी को पता है तो सिंगर के बारे में हमें जरूर बताएं। लेट्स प्ले द सॉन्ग। किसी शायर ने कहा है कि तुम पसंद आ गए,
5: अच्छा
3: तुम पसंद आ गए, ये बस एक इत्तेफाक था।
5: वाह।
3: पर अब हर पसंद में बस तुम्हें पसंद हो, ये इश्क है।
4: क्या बात है।
3: तुमसे बात करने की वजह ढूंढना, फिर बेवजह तुम्हें याद करना, तुम्हारी एक मुस्कान पर दिल का यूं ठहर जाना, बस ये इश्क है।
5: क्या बात।
3: Enjoy this beautiful song. सिंगर मुझे पता नहीं है, आई होप

0: प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक.
1: रिक्वेस्ट करागा तुसी कॉल करके दसो भी कैसा गाना लग्या तुहानू. ए बड़ी तुसी कह लो बड़ी मेहनत तो बाद है सोनम जी नू गाना लभिया सी. और अपना अपना एक तो तुसी सिंगर दसो भी कौन सिंगर सी. और सैकेंड ए दसो भी तुहानू कैसा लग्या गाना. और कॉल कर सकते हो जी कित्थे कर सकते हो जी.
2: 416-233-7368 ते दूजा नंबर है. अच्छा चलो ठीक है जी.
1: दोबारा दसो.
2: 416-233-7368.
1: वाह जी वाह. तो तुसी कॉल कर सकते हो स्टूडियो और दस सकते हो भी तुहानू कैसा लग्या. और इहदे नाल मैं सोनम जी एक और गल दसदा जावां भी अगर तुसी वाकई चाहते हो कोई अच्छा बिजनेस करना और नाल अच्छी मॉर्गेज अच्छे रेट से तुहानू मॉर्गेज मिले. मैं पिछले 27 साल तो मॉर्गेज कर रहे हैं लोनस कर रहे हैं और ऑलवेज ऑन एयर कहना भाई घूमो फिरो चैक करो और आखिर से सानू कॉल करो. कह मकसद की हुंदा जदों तक तुसी साडे कोल आओगे तुहाडी तसल्ली होनी चाहिए है लोग की ऑफर करते पे और असी की ऑफर कर जा रहे हैं. साडे कोल बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम ने तकरीबन ओवर 40 लैंडर्स साडे नाल काम कर रहे हैं. 40 तो ज़्यादा
3: जी जी
1: हाँ जी 40 तो ज़्यादा साडे नाल लैंडर्स काम कर रहे हैं. और हर लैंडर की क्वेश्चन की साडे नाल जुड़िया रहे साडी क्वेश्चन की जो भी ज़्यादा बेनीफिट्स मिल सकते अपने क्लाइंट्स में दवाई जावन. और इन नाल नाल मैं यह कहवागा अगर तुसी कमर्शियल मॉर्गेज लैनी किसी तरह की होटल मोटल गैस स्टेशन प्लाजा लैना या प्लाजे में कोई यूनिट बाय करना उन सूँ कॉल करो. असं बड़ी आसानी ने तुहानू मॉर्गेज दवा सकते हैं.
3: बिल्कुल
1: वधिया तो वधिया इंट्रस्ट रेट और वधिया वधिया टर्म्स एंड कंडीशन ए भी दोवें साडी शर्त होंदी है. असं दोवें तुहानू चीज़ों का ध्यान रख के तुहानू दवावांगे क्योंकि साडे वास्ते जिहड़ा भी क्लाइंट साडे कोल आंदा है वह साडे सिर मत्ते ते हुंदा है. असीं कोशिश करने उन्हें वध तो वध बेनीफिट्स दवाईए. असी कदी केयर नहीं करते बैंकों बुंकों की क्योंकि साढ़े को ऑप्शन बड़िया बहुत सारे बैंक है. सानू साडे वास्ते ज़्यादा जरूरी चीज़ है क्लाइंट साढ़े हैप्पी होवन साढ़े को और हैप्पी होकर जावन सू ज़्यादा मज़ा आता है.
3: बिल्कुल जी.
1: कोई भी जानकारी लेनी हो कॉल कर सकते हो 647-741-9000 647-741-9000 से तुम कॉल कर सकते हो जी. सोनम जी
3: बिल्कुल जी. और थोड़ी सी कमर्शियल ब्रेक की तरफ चलते हैं फिर उसके बाद रियल एस्टेट की न्यूज़ हैं फिर रियल एस्टेट सेगमेंट होगी और उसके बाद कुछ मॉर्गेज के टिप्स होंगे और फिर साथ साथ प्रोग्राम यूं ही चलता रहेगा. हमारे लिसनर्स भी अगर साढ़े लिसनर भी अगर गल करना चाहते हैं सो माय नंबर इज 416-910-6000 416-844-6000 416-940-0033 9 और 416-233-7368 इज द स्टूडियोज फोन नंबर.
4: हाउ इज योर सन डूइंग?
5: निशा पूछ मत. सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही. होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
4: मैं समझ गई. उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
6: शी इज राइट. चाहे बच्चे हों या बड़े वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 Financial Drive, Brampton, 905-457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.
7: Ritz Furniture, the message is that

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165।
1: अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत। कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600। वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5,000 जॉब्स कंप्लीटेड, 16 इंस्टॉलर्स टीम कवर अक्रॉस ओंटारियो, मोर देन 9% इन होम स्टार्स लास्ट मेनी इयर्स। विंडोज एंड डोर मैन्युफैक्चरर, नॉट डीलर्स। यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 और 416-674-7770।

0: और प्रोग्राम यूं ही चलता रहेगा। बातचीत करने के लिए 416-233-7368 विल गो फॉर अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक।
1: जी सोनम जी, जरा ना तुहानू मैं एक होर गल ऐड करदा जावां, जिवें असीं गल कर रहे हां भी मोर्गेज दी, रियल स्टेट दी,
2: इह
1: तुहानू ही अंदाज़ा है भी अजकल थोड़ा जिहा बिजनेस स्लो न और लोग घबराए न, पता नहीं की हो जाना, पता नहीं की हो जाना, लेकिन कदी बंदा ओह तरक्की नहीं करदा जिहड़ा घबराया हुंदा है,
2: कदी भी नहीं करदा जी।
1: अगर तुसीं अगे वधना है तुहानू रिस्क लैना ही पैना है, तुहानू कुछ ना कुछ करना ही पैना है, तुसीं कुछ करोगे तां अगे वधोगे।
2: नासिर साहब एक गल सिखी है, जे जिहड़ा कुछ तुहाडे नाल हो रहा है ना ओह सारी दुनिया नाल ही हो रहा है, सारे नाल इको सेम ही चीज हो रही है,
1: ऐसे तरह
2: ते तुसी अपना हौसला रखो, कम करो ते सक्सेसफुल हो।
1: मैं एक बंदे नाल बैठा हां, बड़ा सीनियर बंदा और काफी बिजनेस वेल एस्टैब्लिश बिजनेस परसन सी, उन्हें मैंने इको गल समझाई है, कहिंदा नासिर जी एक गल दसा, मैं दसो, कहिंदा घबराना नहीं,
2: बिल्कुल
1: भी अगर तुसी घबराओगे नहीं ना तुसी कामयाब हो, अज नहीं तो कल, कल तो परसों, वक्त तौर पे तुहानू लगेगा यार पता नहीं की हो गया मेरे नाल, लेकिन सुन लेटर तुसी कामयाब ही कामयाब होगे।
2: बिल्कुल अपने आप नू इंप्रूव करते रहो
1: जी,
2: घबराओ ना कदे,
1: बिल्कुल इस तरह जी सोनम जी।
0: बातचीत यूं ही चलती रहेगी आपकी और हमारी, और साथ साथ थोड़ी सी रियल एस्टेट की बात भी कर लें
1: जी,
0: सॉरी रियल एस्टेट तो बात हो गई, एस्ट्रोलॉजी की बात मैं करना चाहती हूँ
2: जी, करो जी,
0: है ना। एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे लोग इसको मानते हैं कि ये सुपरस्टिशियस थिंग है और बहुत सारे लोग इसमें बहुत विश्वास करते हैं, जब हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर बात करते हैं तो वी रियलाइज एस्ट्रोलॉजी इज लाइक अ जीपीएस, जैसे आपकी गाड़ी में जीपीएस लगा हुआ है तो आपने कहीं जाना है तो यू एट एड्रेस इन दैट, तो जीपीएस आपको वहां ले जाता है और रास्ते में अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, पुलिस खड़ी है या कहीं पे कुछ खड्डा है या कुछ है तो जीपीएस आपको पहले बता देता है कि आपने थोड़ा सा टेकर राइट टर्न और लेफ्ट टर्न और चेंज अवे। तो द सेम थिंग इज विद एस्ट्रोलॉजी, अगर आप कहीं फंस गए हैं दुनिया में, जिंदगी में, और आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको रास्ता नहीं मिल रहा कि आपने कहाँ जाना है, तो एस्ट्रोलॉजी इज द ओनली एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी इज द ओनली वे टू नो अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर पास्ट, अबाउट योर प्रेजेंट और अबाउट योर फ्यूचर। तो इसके बारे में हम आगे चल के बातचीत करते रहेंगे और आप भी कोई बात करना चाहते हैं तो 416-233-7368।
3: मून स्टार्स, यहाँ हम करेंगे सितारों की भाषा को समझने की कोशिश, क्योंकि आसमान में चमकते सितारे सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, वो अपने भीतर कई रहस्य समेटे हुए हैं। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों के संकेत, ज्योतिष साइंस के गहरे रहस्य और उनके हमारे जीवन, करियर, सोच, रिश्तों, फैसलों और भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव। तो आइए ब्रह्मांड की इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलते हैं, क्योंकि कभी कभी जवाब जमीन पर नहीं सितारों में छुपे होते हैं और हर सितारा एक कहानी कहता है और शायद उनमें से एक कहानी आपकी भी हो। तो चलें सितारों से जुड़िए और खुद को समझिए। ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, यही एक ऐसी विद्या है जो बताती है कि जीवन में जो हुआ, जो हो रहा है या जो होगा वो निश्चित है। इसलिए अगर आप दुखी हो तो अज्ञानता से दुखी हो, सुखी हो तो वो तय हो चुका है, ये ज्योतिष ही बता सकती है। लेकिन कई हजारों में कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका सही ज्ञान है, लेकिन बताने वाले लोग बहुत हैं। ज्यादातर लोग अनाड़ी हैं ज्योतिष की विद्या को लेकर, ज्योतिष के इतने पार्ट हैं तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। जो भी ज्योतिष की आगे ब्रांचेस हैं या पार्ट हैं वो ऐसे हैं कि जैसे खांसी आए तो अदरक शहद खाकर ठीक हो जाओ। इसलिए जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स की ब्रांचेस हैं उसमें खांसी तो ठीक हो जाती है, लेकिन अगर निमोनिया हो जाए, टीवी हो जाए या कोई भयंकर बीमारी हो जाए तो अदरक शहद के ड्रम में भी खांसी नहीं रुकेगी। तब क्या होगा, तब स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो डीप में जाकर बीमारी का इलाज ढूंढेगा। ऐसे ही जब लाइफ में प्रॉब्लम्स हों, समझ ना आए, चारों तरफ ब्लैकआउट हो जाए तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेशंस करके साइंटिफिकली गहराई में जाकर आपको एस्ट्रोलॉजी और हस्त रेखा के जरिए सब कुछ बता

सकता है। सबसे मुश्किल पामिस्ट्री है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, आपकी जिंदगी इसके जरिए जानी जा सकती है, इसमें कोई तुक्का नहीं लगता। ये प्लैनेट्स, ज़ोडियक साइंस और नक्षत्रास की कैलकुलेशन है, तो सही स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है कि आपके आने वाले टाइम में, जिंदगी में, या फिर आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और अगर आपका भाग्य अच्छा है, आपके प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी है, तो ही आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ सकते हो, या फिर एस्ट्रोलॉजर आपको ढूंढ लेगा। तो अगर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए तो वो डॉक्टर्स या लॉयर की तरह आपकी ज़िंदगी में काम करता है। तो आने वाले टाइम में इसके बारे में और नॉलेज आपके साथ शेयर होती रहेगी। सुनते रहें रेडियो गोल्ड।

0: जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये मैच्योर जो करेक्शन है वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही है, तो ऑलमोस्ट इट इज एंडिंग, द करेक्शन इज एंडिंग, तो प्राइस जो है वो बैलेंस है। तो प्राइस बैलेंस होने का मतलब ये है अब ये बढ़ने शुरू होंगे, लेकिन अभी नहीं, इस साल के एंड के बाद।
1: अच्छा,
0: क्योंकि इन्वेंट्री अभी पड़ी है, 4.5 महीने की इन्वेंट्री है अपने पास, ये थोड़ी और कम होगी, जैसे ही थोड़ी और कम होगी 3 महीने तक इन्वेंट्री आएगी, तो कंपटीशन बढ़ेगा, तो एक ही घर पे दो बायर्स होंगे, तो प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे।
1: तो इस इनका मतलब है ये 3-4 महीने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ
0: ਨਾ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ।
1: ਅੱਛਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦਿਓ,
0: 416-844-6000।
1: अच्छा जी, क्या बात है सोनम जी। हूँ तुम की कहना चाहोगे रियल एस्टेट के बारे में?
2: बिल्कुल जी, रितेश जी ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, एंड वी शेयर द न्यूज़ एज वेल। तो अगर हमारे लिसनर्स कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नंबर 416-910-6000 या रितेश जी का नंबर है 844-6000। और हाँ जी नासिर जी, क्या कहना चाहेंगे
1: जी? मैं उन्हें दसना चाहूँगा, डॉक्टर साहब आए ना, वो डॉक्टर साहब होम्योपैथिक गोल्ड मेडलिस्ट ने, कनेडियन गोल्ड मेडलिस्ट, उन्होंने कहा जी किसी तरह की तकलीफ है साढ़े को, एक बार लाजमी पुछो, अभी तुम्हें दसा गए किमें तुहाड़ा इलाज हो सकता है किसी तरह का। देखो अजक इतने ना तुम्हें पता है ड्रिंक बड़े लोग करते हैं, उन्होंने फैटी लीवर हो जाता है, वो कहते अगर तुम ड्रिंक बहुत ही करते हो तो फैटी लीवर हो गया, सानू कॉल करो। अगर तुम्हें पेशाब बहुत आता है, बार बार आता है, वो भी सानू कॉल करो, क्योंकि 50 तो बाद प्रॉब्लम शुरू होती है, बहुत सारे लोगों को रात 3-3, 4-4 भी उठना पैंता, वो कहते सानू कॉल करो। बच्चों की ग्रो नहीं प्रॉपर हो रही, बच्चे की एज हिसाब न उन्होंने कद छोटा रह गया, वो कहते सानू कॉल करो। वो बहुत सारिया चीज़ें ने, और सब तो वधिया गल असीं भी बचपन तो यही सुनते आ रहे हैं, होमो होम्योपैथिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर तुम चाहते हो वाकई प्रॉपर इलाज हो, साइड इफेक्ट भी ना हो, तो डॉक्टर अबरार हुसैन उन्होंने नाम है, और पिछले कई सालों तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इतने कनेडियन गोल्ड मेडलिस्ट है, और बड़ी कामयाब इन्होंने, बहुत सारे लोग उन्होंने को आते हैं। नंबर बड़ा सौखा जहाँ उन्होंने 6475535300 ते कॉल कर सकते हो, 5535300 ते कॉल करके जानकारी ले सकते हो। उन्हें नाल नाल मैं तुहानू एक बार फिर दसदा जाऊंगा, ओपन माइक कैफे एंड कुजीन दा मैसेज, अगर तुसी चाहते हो वाकई चंगा टेस्ट मिले, लाहौरी टेस्ट मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग पार्टियां करते हैं फ्राइडे सैटरडे नाइट फ्राइडे नाइट, उन्हें डेली पार्टी, तुसी उबर ते भी ऑर्डर कर सकते हो, तुसी फोन करके भी ऑर्डर कर सकते हो। नंबर बड़ा सौखा जे है, और टेस्ट की वह गरंटी है देंगे, पे कहते मज़ा नहीं आएगा तो पैसे नहीं लवागे। कढ़ाई खानी है तुसी, गोट कढ़ाई, चिकन कढ़ाई तुसी खानी है, और वाकई लाहौरी कहें कढ़ाई खानी है, तो तुसी एक बार लाजमी कॉल करो। और इन नाल नाल तुसी चाहते हो भी कबाब, सी कबाब, थाई लेग ओवन, चिकन
2: दी, सॉरी मैं तुहानू विच रोक रही हां, व्हाई डोंट वी डू दैट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, कुछ तुसी साडे लिसनर्स नु थोड़ा जा कूपन सी दो।
0: आई नो,
1: अच्छा फिर इस तरह
2: नेक्स्ट वीक तो है,
0: लॉन्ग वीक, लॉन्ग वीकेंड भी है,
1: लॉन्ग वीकेंड। देखो असि ब्रेकफास्ट भी तुम दसदा जाओ, ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं, और ब्रेकफास्ट सुबह 10 तो लेके,
2: नहीं नहीं जिहड़े रेडियो गोल्ड सुनेंगे उन्होंने स्पेशल ऑफर मिलनी चाहिए।
1: चलो जरा ये प्रोग्राम का हवाला देवे सोनम जी के नाम लेके, उन्होंने 15% डिस्काउंट देवे,
0: क्या
1: और की चाहिए। रेडियो गोल्ड का नाम लवो, सोनम जी का नाम लवो, तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। नंबर बड़ा सौखा जे, 416-526-6800 से कॉल करके जानकारी लै सकते हो, 5246-6800 फोन करके जानकारी ले सकते हो। और टेस्ट लाहौरी टेस्ट, हलीम खानी है, लाहौरी चने खाने ने, तो तुसी कॉल जरूर करो। और इन्दे नाल नाल एक बहुत वड्डा कॉल आ रहा पाकिस्तान तो, शेर मियादाद, उनके शोवों की बुकिंग अगर तुसी करवानी है वह भी तुसी कॉल कर सकते हो। और शोवों की बुकिंग वास्ते नंबर तुसी नोट कर लो, 6477419000 कॉल कर सकते हो। शेर मियाँ दाद तुसी पाओगे, यह नुसरत फतेह अली खान साहब का नैफ्यू है, और बहुत वड्डा नाम है, तुसी कोई भी उन्होंने नाम पा के शेर मियाँ दाद की यूट्यूब से कॉली सुनोगे, तुहानू मज़ा आ जाएगा। 6477419000 जी सोनम जी।
2: जी बहुत शुक्रिया नासिर जी और रितेश जी, थैंक यू सो मच कमिंग टू द स्टूडियो। और प्रोग्राम दी ये हलचल चलती रहेगी एवरी सैटरडे, यू कैन लिसन 5 to 6 एवरी सैटरडे रेडियो गोल्ड, और सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट से जाके तुसी रेडियो गोल्ड नू सर्च कर सकते हो। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रियल एस्टेट, रिगार्डिंग वास्तु, रिगार्डिंग नेगेटिव एनर्जी नू किदा रिमूव करना है, और रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंजॉय करो अपना लॉन्ग वीकेंड, ब्यूटिफुल लॉन्ग वीकेंड, लास्ट लॉन्ग वीकेंड ऑफ समर, राइट? And then we are moving towards the fall, and then winter is just knocking the door.
0: That's right.
2: So enjoy kar, haan
0: ji. But don't drink and drive.
2: Don't drink and drive. Hamesha, yes. Always just keep in mind. Apne liye driver ko arrange karo all the time. एंड बट डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव. और हमें यहीं पे इजाज़त दें इस खूबसूरत सी कव्वाली के साथ, आपको छोड़े जा रहे हैं. नेक्स्ट सैटरडे आपके लिए हम प्रोग्राम लेके हाजिर होंगे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और ज़िंदगी जैसी भी हो, बस ज़िंदगी है. ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर गम दिए, लेकिन जितने भी दिए कम दिए.
1: खूबसूरत शेर याद आ गया जी.
2: हाँ जी,
1: क्या एक सागर सी बड़ा वड़ा जरा कह लो शायर है पाकिस्तान का, कहंदा है ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, ना जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं.
2: क्या बात, बहुत मजा आ गया. बिल्कुल जी, बिल्कुल है ना. तो सब जिसनों भी पूछो सब सब दे आंसर यही होंगे जिंदगी नु लेके. बट स्टिल जिंदगी जैसी भी है, चाहे गम है, दुख है, तकलीफा ने, बट इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ.
1: बिल्कुल, और तुसे उनु एंजॉय करो. असी लोग है कहने असी एक बारी आना दुनिया ते दोबारा नहीं आना, लेकिन अगर आ गया तो एंजॉय करो बजाय तुसी हेडेक लैन दे. और इजी हो जाओ लाइफ नु, थोड़ा इजी कर लो. एक साल शायद तुहानू होर एफर्ट करनी पेगी, एक साल बाद सारी चीजां वापस आवांगी, क्योंकि बहुत सारे लोग गिव अप कर बैठे ना.

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। 6:02 हो गया जी। रेडियो अंदाज लैके मैं थोड़ी होस्ट परम हाजिर हो चुकी हाँ। मेरे वालों साढ़े सारे लिसनर्स नू सारे परिवारों नू बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी एंड खुश आमदीद एंड स्वागतम।